भाई क्या कर रहे हो? अरे यार चलिए लीजिए आपसे वैसा कर लीजिए अरे मेरी आगे जिसे जिसे जिसे जिसे जिसे जिसे माननीय